0: श्रोताओं, सभा के आरंभ में सुनिए अनमोल विचार।
1: पुरुषार्थी व्यक्ति अपने पौरुष के बल पर असाध्य को भी साध्य बना लेता है। वह साधन और असाधन की अपेक्षा नहीं करता। वह जाड़ा, गर्मी, बरसात को अपने लक्ष्य प्राप्ति का बहाना नहीं बनाता। प्रत्येक पल उसके लिए शुभ मुहूर्त होता है। उसके लिए कुछ भी भार स्वरूप नहीं होता, क्योंकि वह समर्थ होता है। वह अपनी भुजाओं के बल पर हवाओं का रुख मोड़ता है। भीतरी ऊर्जा से वह बिजलियों का आलिंगन करता है। अपने पौरुष के तेज से दिशाओं को चमकाता है। उसके लिए ना कुछ असंभव होता है और ना कुछ कठिन। वह धरा के विपरीत चलता हुआ इतिहास बनाता है। दुनिया उसका लोहा मानती है।
0: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए समवेत स्वरों में मातृ वंदना।

मातृवंदना के पश्चात अब लीजिए सुनिए एमएस शुभलक्ष्मी की आवाज़ में ये भजन।

0: श्रोताओं, सूरज कुमार के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें कंटूर बंडिंग के संदर्भ में। यदि पहाड़ी एवं ढालू भूमि पर कृषि कार्य किए जाते हैं तो इससे ऊपर की उपजाऊ मिट्टी के बह जाने का डर रहता है। इस उपजाऊ मिट्टी के बह जाने से भूमि बंजर हो जाती है और ऐसे क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के विशेष उपाय करने पड़ते हैं। सीढ़ीनुमा खेत अधिक ढाल पर बनाए

0: जाते हैं, जबकि कम ढालू जमीन पर कंटूर बंडिंग की जाती है। कंटूर बंडिंग का अर्थ है समान ऊंचाई के स्थानों पर मेड़ बनाना। जब भूमि का ढाल अधिक बढ़ता जाता है तो उसे बराबर करना कठिन हो जाता है, लेकिन भूमि को ऐसे भी हम नहीं छोड़ सकते, अतः इन पर खेती करने से पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि मृदा संरक्षण की विभिन्न विधियों का हम पालन करें। कंटूर बंडिंग ऐसा उपाय है जिससे ढालू भूमि पर मिट्टी का कटाव कम करके खेती की जा सकती है। कंटूर बंडिंग यानी समान ऊंचाई के क्षेत्रों में मेड़ बनाना 6% ढाल तक की भूमि पर की जाती है। ढालू भूमि पर एक दूसरे से एक निश्चित दूर पर मेड़ बना दी जाती है। मेड़ की ऊंचाई तथा चौड़ाई एक निश्चित अनुपात में रखी जाती है। अधिक वर्षा के क्षेत्र में, जैसे कि हमारे इन द्वीप समूह में, कंटूर बंडिंग करते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो कंटूर बंडिंग प्रायः शुष्क क्षेत्रों में ही की जाती है, लेकिन कुछ एक परिवर्तन के साथ इसे हम हमारे इन द्वीपों में भी अपना सकते हैं, यानी अधिक वर्षा के क्षेत्र में भी इसे अपनाया जा सकता है। अधिक बारिश के क्षेत्रों में इसे ग्रेडेड बंड कहते हैं। ग्रेडेड बंड का तात्पर्य है एक निश्चित ढाल पर बंड बनाना। किसान भाइयों, जिस भूमि पर ग्रेडेड बंड बनाना हो वहां पर कंटूर से थोड़ा हटकर ग्रेड अर्थात ढाल पर बंड बनाने के लिए खूंटी लगा दें, फिर ऊपर की ओर से मिट्टी निकालकर नीचे की ओर डाल दें। इस प्रकार बंड अर्थात मेड़ के साथ साथ एक नाली भी बन जाएगी। बारिश का पानी इसी नाली से होकर बह जाता है। नाली के अंत में मेड़ के लंबवत एक पक्की मेड़ बनाकर उसमें पानी निकालने के लिए नाली बना दें। इस बात का ध्यान रखें कि मेड़ के साथ साथ बहकर निकलने वाला पानी इस प्रकार से किसी बड़े नाले में निकाला जाए कि वहां भूमि कटाव की आशंका ना रहे। दो मेड़ों के बीच की दूरी 40 से 50 मीटर से ज्यादा ना हो। मेड़ की ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर के बीच तथा मेड़ के नीचे की चौड़ाई 3 से 4.5 मीटर के बीच होनी चाहिए। ऊपर की चौड़ाई 1 मीटर तक रखा जा सकता है। इस मेड़ के ऊपर घास एवं छोटे फलों के वृक्ष भी लगाए जा सकते हैं। दो मेड़ों के बीच में जुताई एवं अन्य कार्य ढलान के विरुद्ध करनी चाहिए। अधिक बारिश के क्षेत्रों में बीच में घास की एक ऐसी पट्टी डाल दे जो कि ऊपरी हिस्से की बहती हुई मिट्टी को रोक सके। अतः ढालू भूमि पर मृदा कटाव को रोकने के लिए कंटूर बंडिंग की विधि अपनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भूमि का संरक्षण तो होगा ही, साथ ही ढालू भूमि में जल प्रबंध भी सफलतापूर्वक हम कर पाएंगे।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना एग्री टिप्स कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
0: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें कंटूर बंडिंग के संदर्भ में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:10 हुए हैं। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार MV कालीघाट लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी कल सवेरे 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी।

शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा आज सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान आज ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा जलयान की वापसी आज सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी आज ही 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। इस बीच ये जलयान 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा जलयान की वापसी आज शाम 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी रानी लक्ष्मी आज शाम के 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा जलयान की वापसी कल सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। मायाबंदर होते हुए दिगलीपुर की यात्रा पर एमवी जॉली बॉय कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान की वापसी बृहस्पतिवार 2 तारीख को सवेरे 7 बजे दिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

0: ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

0: इंद्रधनुष के इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज बातें जिंदगी की। दोस्तों, जिंदगी हर पल हमें कुछ नया सिखाती है। हर सफर में खुशियाँ भी होती है और चुनौतियाँ भी, लेकिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना ही जीवन की खूबसूरती है। आने वाला कल कैसा होगा यह कोई नहीं जानता, इसलिए हर पल को खुलकर जीना और यादगार बनाना ही सबसे बड़ी कला है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को बयां करता ये गीत।
1: जिंदगी एक

दोस्तों, जिंदगी कभी खुशियों से भर देती है तो कभी हमें नए सवालों के सामने खड़ा कर देती है। हर मोड़ पर कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कभी हम अपनी मंजिल खोजते हैं तो कभी खुद को।

दोस्तों, जिंदगी का सफर सिर्फ आसान रास्तों से नहीं बना होता, इसमें हर मोड़ पर इम्तिहान छिपा होता है। कभी जिंदगी हमें परखती है तो कभी हमारी दिल लगी और मासूमियत की परीक्षा लेती है, और सबसे खूबसूरत रिश्ता दोस्ती भी कई बार हमारे भरोसे और समर्पण को आजमाती है।

0: इंद्रधनुष कार्यक्रम का आज का ये सफर शबाना के साथ बस इतना ही, होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही थी शबाना बेगम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 250वीं कड़ी।

राक्षस इतने बलवान और बड़े योद्धा हैं, उन्हें नन्हे नन्हे वानर भला किस प्रकार मार सकेंगे? सीता जी का ये संशय हनुमान ने सुमेरु जैसा अपना आकार दिखाकर पल भर में मिटा दिया। फिर छोटा रूप धारण कर बोले, हे माता, वानरों में बलबुद्धि तो नहीं होती, किंतु प्रभु की कृपा से छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। सीता जी को सभी प्रकार से संतुष्ट करके पवन पुत्र ने अपनी भूख मिटाने के लिए न केवल फल फूलों का आहार करना आरंभ किया, बल्कि इस क्रम में पूरी वाटिका ही उजाड़ डाली। रोक टोक करने वाले रखवालों को मसल कुचल कर मार डाला। विध्वंस का समाचार सुनकर रावण ने बंदर को पकड़ लाने के लिए योद्धा भेजे। उनका संहार सुन अपने पुत्र अक्षय कुमार को पठाया। एक भयंकर गर्जन के साथ जब हनुमान ने एक वृक्ष उखाड़कर उसे भी मार डाला, तो रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को आदेश दिया कि वो जाकर उस वानर को बांध कर ले आए।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 250वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और अनुराधा पौड़वाल तथा संगीत संयोजक सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत देशगान का लुफ्त ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम और कार्यक्रमों का विवरण। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 2 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। ये था मौसम का हाल।

अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे सुनिए जनसूचनाएं। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए ब्रिस्क वॉकिंग पर शिब्बू जॉर्ज से जानकारी और कुछ फिल्मी गीतों का आनंद आप ले पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे गुलाम अली। तराने सुहाने कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे सवेरे 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में MS गोपाल कृष्णा का गायन आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल का समय होगा दिन के 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1317वीं कड़ी आप सुनेंगे 11 बजे। चित्रगीत का समय होगा 11:30।

12 बजे सुनिए तेलुगु कार्यक्रम तथा मलयालम कार्यक्रम का समय होगा 12:30। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:10 पर कलाकार होंगे बेगम अख्तर। 1:30 पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम के साथ। 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम का समय होगा 4:45। तमिल कार्यक्रम शाम 5 बजे और शाम 5:30 पर आप सुनेंगे बांग्ला कार्यक्रम। शाम 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा शाम ए बहार का समय 6:30। 7:15 पर मौसम जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय होगा 7:20। 7:30 पर युवानी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम होगा देश की शान। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8 बजे। रोजगार समाचार व गौरवगान आप सुनेंगे 8:30 पर। रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेश आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम समाचार का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 पर संस्कृत में समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्रीविजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 9.0 मिलीमीटर वर्षा हुई है। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 94% तथा न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 29.2 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 4:59 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 7:47। अब लीजिए सुनिए विमान की उड़ान संबंधी सूचना। दिल्ली से आ रही यात्री विमान संख्या 2937 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए आज उड़ान होगी 11:40 पर। सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। ये थी जनसूचनाएं। श्रोताओं, आपको बता दें कि 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी। सात बजकर 30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर गुड मॉर्निंग अंडमान में खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए ब्रिस्क वॉकिंग पर शिब्बू जॉर्ज से जानकारी और कुछ फिल्मी गीतों का आनंद आप ले पाएंगे।

0: तराने सुहाने कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 9 बजे, 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में MS गोपाल कृष्णा का गायन आप सुन पाएंगे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्रीविजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने मैरन हिल सर्किट हाउस परियोजना के प्रस्तावित पुनर्विकास पर संशोधित प्रस्तुति की समीक्षा की। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद में अपग्रेड कार्य के चलते ऑनलाइन सेवाएँ अस्थायी रूप से बंद रहेंगी और प्रशासनिक कारणों से MV नालंदा के निर्धारित यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में द्वीप समूह में भी सहकारिता विभाग ने अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और विभिन्न सहकारी समितियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सहकार से समृद्धि की शपथ दिलाकर इस सप्ताह की शुरुआत की। उद्घाटन अवसर पर सहकारिता सचिव ने आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की पहलों के संदेशों से लैस एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सहकारिता विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पूरे द्वीप समूह में भी इसी तरह की गतिविधियां आयोजित की गईं। विभाग द्वारा सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के दौरान सहकारी क्षेत्र की पहलों, उपलब्धियों और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न आउटरीच, जागरूकता और हितधारक जुड़ाव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने मैरिन हिल सर्किट हाउस परियोजना के प्रस्तावित पुनर्विकास पर एक संशोधित प्रस्तुति की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मिशन मोड में लिया जाए। नशा मुक्ति जागरूकता माह नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तहत अंडमान निकोबार पुलिस ने पूरे द्वीप समूह में जागरूकता कार्यक्रमों, सार्वजनिक संपर्क गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और प्रवर्तन पहलों की एक श्रृंखला आयोजित की। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना और नशा मुक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। ये पूरा अभियान पुलिस उप महानिरीक्षक जितेंद्र कुमार मीणा और पुलिस उपाध्यक्ष नारकोटिक्स सुमा मुद्दा के समग्र पर्यवेक्षण में संचालित किया गया। राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार अंडमान निकोबार प्रशासन टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय गहन अभियान को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। ये अभियान तपेदिक के उन्मूलन के लिए एक व्यापक और लक्षित दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य चेस्ट एक्सरे और अग्रिम नेट परीक्षण के माध्यम से स्क्रीनिंग कर टीबी के सभी छूटे हुए मामलों की जल्द पहचान करना है। 29 जून तक चलाए गए अभियान के तहत कुल 752 आयुष्मान शिविर आयोजित किए गए। इसी क्रम में 9,230 नए निश्चय नामांकन किए गए। परीक्षण के दौरान टीबी के कुल 117 मामले सामने आए। द्वीप प्रशासन ने सभी नागरिकों से टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में योगदान देने की अपील करते हुए 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों, कुपोषित मधुमेह रोगियों, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वालों या जिन्हें पिछले 5 वर्षों में टीबी हुई थी, उन्हें अपने नज़दीकी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जाँच कराने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.pbmc.gov.in वर्तमान में नई दिल्ली स्थित NICAI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपग्रेड की जा रही है। इस अवधि के दौरान परिषद की वेबसाइट के माध्यम से नगरपालिका परिषद करों और अन्य देय राशि के भुगतान सहित ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। प्रशासनिक कारणों से MV नालंदा के निर्धारित यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब ये जहाज 1 जुलाई के स्थान पर 3 जुलाई को सुबह 9 बजे हेडो जट्टी से नानकोड़ी होते हुए कैम्बल बे के लिए रवाना होगा। इसकी वापसी 5 तारीख को सुबह 8 बजे कैम्बल बे से नानकोड़ी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। यात्री संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पुराने टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रंगलाल हल्दर ने मुख्य सचिव से दक्षिण और मध्य अंडमान के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के कई संवेदनशील हिस्सों पर सड़कों के किनारे उगी घनी और अवांछित झाड़ियों को तत्काल हटाने के लिए कदम उठाने की अपील की है। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि जिरगाटांग से मिडिल स्ट्रीट, बाराटांग से गांधी घाट और कदमतला 3 नंबर गेट से पर लोबजिक 15 नंबर गेट तक के हिस्सों में सड़क के किनारे वनस्पतियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं, जिससे वाहनों की दृश्यता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इनमें से एक हिस्से में एक दुर्घटना भी हो चुकी।

है। उन्होंने मुख्य सचिव से संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर NH4 के इन चिन्हित हिस्सों में अवांछित वनस्पतियों को हटाने के लिए तत्काल सफाई अभियान चलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण विरोधी अभियान पहल के तहत कल 11 शर्मा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। राजस्व अधिकारियों ने सरकारी राजस्व भूमि पर बने 5 अनधिकृत ढांचों और 4 बाड़ों सहित कुल 9 अतिक्रमणों को हटाकर लगभग 2,500 वर्ग मीटर सरकारी राजस्व भूमि को बहाल किया। प्रशासन ने लोगों से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न करने और अवैध कब्जे या अनधिकृत निर्माण के किसी भी मामले की तुरंत सूचना देने का अनुरोध किया है। पुणे महाराष्ट्र में हाल ही में आयोजित अंडर 23 और प्रथम पैरा नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में भारतीय खेल प्राधिकरण की आवासीय प्रशिक्षुओं स्नेहा टोपो और पी अलगम्बल ने कांस्य पदक जीता है। इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से कल लिटिल अंडमान के हरमिंदर बे में सुअर पालन पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर सह जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनजातीय किसानों और पशुपालकों ने हिस्सा लिया। शिविर के दौरान पशु चिकित्सा टीम द्वारा कुल 516 पशुओं का इलाज और परीक्षण किया गया। इस शिविर में किसानों द्वारा लाए गए पशुओं को मौके पर ही उपचार, कृमि मुक्त टीकाकरण और आवश्यक दवाएं प्रदान की गईं, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से सुअर पालन पर विशेष जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। द डेली टेलीग्राम्स ने टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय सघन अभियान की उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रमुखता दी है। द्वीप समाचार ने भी इस समाचार के अलावा दक्षिण अंडमान में मोटर चालित मत्स्य नौकाओं के पंजीकरण निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित सूची जारी करने के समाचार को भी प्रमुखता से छापा है। अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने हटबे और लॉन्ग आइलैंड को उभरता हुआ पर्यटन स्थल के रूप में बताते हुए लोगों द्वारा 1 महीने पहले जहाज सारणी लागू करने के मांग के समाचार को अपने अखबार में जगह दी है। इन्फो इंडिया ने क्यारी द्वारा टोशनाबाद गांव में खेत बचाओ अभियान के समाचार को, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने अबरडीन पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न के मामले में पड़ोसी को गिरफ्तार करने के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने मैरन हिल सर्किट हाउस परियोजना के प्रस्तावित पुनर्विकास पर संशोधित प्रस्तुति की समीक्षा की। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद में अपग्रेड कार्य के चलते ऑनलाइन सेवाएँ अस्थायी रूप से बंद रहेंगी और प्रशासनिक कारणों से MV नालंदा के निर्धारित यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागी।

एक ऐसा गीत लेकर आए हैं जो सभी के दिल को छू जाता है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, एक भाव है, अपने देश के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देने का एक संकल्प। ये गीत हमें उन वीर जवानों की याद दिलाती है जो अपने मिट्टी को माँ समझकर उसके लिए सब कुछ लुटा देता है।

जिस धरती ने हमें जीना सिखाया, उसी ने प्रेम और बलिदान का अर्थ बताया। ऐ वतन, तेरा ऋण कभी चुका ना पाएंगे, हर जन्म तुझ पर अपना जीवन लुटाएंगे।

तेरी मिट्टी की खुशबू है तेरी पहचान, तेरे गोद में पलकर हमने जीना सीखा है, तेरे लिए हर मुश्किल से लड़ना सीखा है, तेरा तिरंगा हमारी शान और अभिमान है, तेरी रक्षा करना हर भारतीय का अरमान है, तेरे वीर सपूतों के बलिदान को नमन है, उनके साहस से ही सुरक्षित अपना वतन है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं, अब सुनिए कार्यक्रम

श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार है, शक संवत

0: 1948 के आषाढ़ माह की 19वीं तिथि यानी 30 जून 2026। श्रोताओं, आज जून माह का अंतिम दिन है, जो हमें यह याद दिलाता है कि समय कभी नहीं रुकता। जो बीत गया है उससे सीखे, और जो आने वाला है उसका उत्साह से स्वागत करें। तो आइए आपको सुनवाते हैं खेल जगत कार्यक्रम के तहत ब्रिस्क वॉकिंग पर शिबू जॉर्ज से जानकारी।
1: नमस्कार, खेल जगत के आज के संत में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज कुछ बातें पैदल चलने या वॉकिंग के संदर्भ में। श्रोताओं, आज समाज में कई ऐसी बीमारियां पैर जमा चुकी हैं जिन्हें मोटे तौर पर लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है। समाज का कोई भी तबका इन बीमारियों से अछूता नहीं है, और अब ये बीमारियां जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। डायबिटीज, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, हृदय रोग आदि बीमारियां हमारी जीवन शैली और व्यायाम में कमी का नतीजा हैं। व्यायाम वैसे तो कई प्रकार के हो सकते हैं। पैदल चलना या वॉकिंग व्यायाम का सबसे सरल तरीका है। ये एक ऐसा एरोबिक एक्सरसाइज है जिसे हर कोई कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती जागरूकता के चलते सुबह और शाम कई लोग पैदल चलते देखे जा सकते हैं। लेकिन व्यायाम के लिए कैसे चलना चाहिए? क्या महज टहलना व्यायाम हो सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि तेज चलने या ब्रिस्क वॉकिंग से ही वांछित फायदा हो सकता है। अमेरिका स्थित सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC के अनुसार ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है 1 घंटे में 5 किलोमीटर या 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलना। हालांकि एकदम तंदुरुस्त लोगों के लिए ये पर्याप्त नहीं है। 1 घंटे में 6.5 किलोमीटर चलने से ही ऐसे लोग मॉडरेटली इंटेंस एक्सरसाइज जोन में आ सकते हैं। तेज चलने की गति अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। मोटे तौर पर ऐसा समझा जा सकता है कि ब्रिस्क वॉकिंग के लिए आपको इतना तेज चलना चाहिए कि आपकी सांसें सामान्य से तेज चलें। आप ठीक से बात तो कर सकें, पर स्थिति में आप गाना ना गा पाएं। CDC के अनुसार मध्यम व्यायाम की स्थिति में हृदय की गति सामान्य से 50 से 70% तक ज्यादा हो सकती है। आइए देखें वॉकिंग के क्या क्या संभावित फायदे हैं। पैदल चलने से हृदय संबंधी रोगों से हम बहुत हद तक दूर रह सकते हैं। इस तरह के व्यायाम से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, जो कि हृदय संबंधी रोगों के लिए जिम्मेदार होता है। पैदल चलने से हृदय, फेफड़े व मांसपेशियां मजबूत होती हैं। एक मजबूत हृदय से हृदय गति बढ़ती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक खून पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। ब्रिस्क वॉकिंग से आप प्रतिदिन 200 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हैं, और इस तरह शरीर में फैट कम होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से पैदल चलने से आपका शारीरिक वजन सामान्य रहता है, जिससे बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI ठीक रहता है और रक्तचाप सामान्य होता है। पैदल चलने से मांसपेशियों में ज्यादा गति होती है, फलस्वरूप मसल सेल्स द्वारा ज्यादा ग्लूकोज का अवशोषण होता है, जो कि मधुमेह के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। शोधों से यह बात सामने आई है कि ब्रिस्क वॉकिंग से आहार में मौजूद कैंसर कारक अवयवों को आंतों के संपर्क में आने का कम समय मिलता है, जिससे कॉलोन कैंसर का खतरा शुरू से ही कम हो जाता है। नियमित रूप से चलने से न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि मानसिक रूप से भी हम तंदुरुस्त रहते हैं। इससे हम तनाव कम महसूस करते हैं। पैदल चलने से हमारे मस्तिष्क तक खून का प्रवाह और फलस्वरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा होती है, जिससे मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ जाती है। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों में ये डेमेंशिया और अल्जाइमर्स आदि बीमारियों के प्रबंधन में काफी कारगर सिद्ध हुआ है। किसी भी कार्य से वांछित परिणाम हमें तभी मिलते हैं जब उसे सही ढंग से किया जाए। पैदल तो हम सभी चलते हैं, तो इसमें

सही तरीके का क्या सवाल है। जी हाँ, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर की ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करना है। अगर आप हृदय संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप आदि के मरीज हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए सुरक्षित व्यायाम की हद क्या है। आप कितनी तेजी से चल सकते हैं, कितनी देर चल सकते हैं और क्या सावधानी आपको बरतनी है। कपड़े ऐसे पहनें जिसमें आप आराम महसूस करें। बहुत सारे लोग चप्पल पहनकर वॉकिंग करते हैं जो कि गलत है। ब्रिस्क वॉकिंग जूते पहनकर ही करने चाहिए और जूते भी ऐसे हों जो हल्के तथा आरामदायक हो। आप आमतौर पर जो जूते पहनते हैं उससे एक नंबर बड़े जूते का प्रयोग वॉकिंग के लिए करें तो बेहतर होगा। जूतों के सोल बहुत कड़े नहीं होने चाहिए। अक्सर हम तेज चलने की कोशिश करते हैं तो लंबे लंबे कदम रखते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। कदम छोटे छोटे और तेज होने चाहिए। चलते वक्त जब आपके कदम जमीन पर पड़ते हैं

0: आप आमतौर पर जो जूते पहनते हैं उससे एक नंबर बड़े जूते का प्रयोग वॉकिंग के लिए करें तो बेहतर होगा। जूतों के सोल बहुत कड़े नहीं होने चाहिए। अक्सर हम तेज चलने की कोशिश करते हैं तो लंबे लंबे कदम रखते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। कदम छोटे छोटे और तेज होने चाहिए। चलते वक्त जब आपके कदम जमीन पर पड़ते हैं तो एक रोलिंग मोशन होना चाहिए, यानी पैर की एड़ी पहले जमीन पर पड़नी चाहिए और फिर अगला हिस्सा यानी टो। अगर आपके पैर सपाट जमीन पर पड़ेंगे तो इससे आपके शिन और घुटनों में दर्द होगा। चलते वक्त दोनों हाथ भी पैरों के साथ आगे पीछे होने चाहिए, लेकिन अगर आप अपने हाथों को सीधे आगे पीछे ले जाएंगे तो इससे आपके चलने की गति प्रभावित होगी। सही तरीका यह है कि आप चलते वक्त अपने हाथों को 90 डिग्री एंगल पर मोड़िए और आगे पीछे नेचुरल तरीके से स्विंग कीजिए। चलते वक्त सिर का पोस्चर भी ठीक होना चाहिए। कुछ लोग सिर झुकाकर अपने पैरों को देखते हुए चलते हैं, जो कि गलत तरीका है। चलते वक्त सिर हमेशा जमीन के समानांतर होना चाहिए और आपकी आंख आगे 10 से 20 फीट तक फोकस होने चाहिए। सिर के सही पोजीशन से आप अपने बैक, गले और कंधों में होने वाले संभावित समस्याओं को रोक सकते हैं। सामने की ओर 5 डिग्री से ज्यादा झुककर चलना भी वॉकिंग का गलत तरीका है। सामने या पीछे की ओर झुककर चलने से बैक पेन हो सकता है। चलते वक्त आपका पोस्चर बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। चलने से पहले, चलते वक्त और चलने के बाद पर्याप्त पानी नहीं पीना भी समस्या पैदा कर सकता है। ब्रिस्क वॉकिंग शुरू करने से 10 मिनट पहले एक ग्लास पानी पी लेना उचित रहता है। मौसम और कितनी देर आप चलते हैं इसके आधार पर चलते वक्त भी अगर पानी की जरूरत हो तो पी लेना चाहिए। वॉकिंग समाप्त करने के बाद एक या दो ग्लास पानी पी लेना ठीक रहता है। और हाँ, आखिरी सलाह, ओवरडू मत कीजिए। अगर आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन लग रहा है, जोड़ों और शरीर में काफी दर्द हो रहा है, तो सावधान, आप अपनी क्षमता की सीमा को लांघ रहे हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ बातें पैदल चलने या ब्रिस्क वॉकिंग के संदर्भ में। उम्मीद करते हैं कि व्यायाम का ये तरीका आप जरूर अपनाएंगे, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इस काम को सही ढंग से करेंगे ताकि वांछित फायदा हो सके। खेल जगत के आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
1: श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत अब सुनिए कुछ फिल्मी गीत। पहला फिल्म हमने लिया है कलाकार साधना संगम की आवाज में। शब्द रचना की है इंदिवर और मनोज कुमार ने। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म पागलपन से सुनिए एक गीत जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, बोल समीर के और संगीत राजू सिंह का।

अगला गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी का लिखा गीत और घर घर की कहानी फिल्म के इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में तैयार, अब सुनिए जावेद अख्तर का लिखा गीत अलका याग्निक और शान की आवाज़ों में। फिल्म का नाम कल हो ना हो।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। 8 बजे सुनिए समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

दिल्ली से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील

0: ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध

0: ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

0: ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16.

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में गुलाम अली को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 9 बजे हैं। आपके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है लोफर फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर, धुन तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं संगम फिल्म का ये गीत। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल यूविन पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: याद रखना दोस्त, खुद के लिए और अपनों के लिए लेनी है दवा रोज।
1: कौन सी?
0: अरे वही
2: ARTी। तो ARTी बोलो, रोज लिया क्या?
3: HIV/AIDS के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए ARTी रोज लिया क्या? नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। कार्यक्रम में अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम धर्मवीर।

दाग। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार के स्वर में। शब्द रचना सहीर की तथा संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एसएच बिहारी की रचना में अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। कश्मीर की कली फिल्म से संगीत दिया है ओपी नायर ने।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं M.S. गोपाल कृष्णन का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन, तथा इनका साथ दिया है डॉक्टर एन नर्मदा ने। मृदगम पर है मन्नारगुड़ी ईश्वरन और तानपुरा पर है जी सुरेश कुमार ने संगति की है। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं M.S. गोपाल कृष्णन का वायलिन वादन में बजाया राग चालनट्टाई, जो आदि ताल में निबद्ध है, तथा कृति कोटेश्वर अय्यर की है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए राग तोड़ी, जो आदि ताल में निबद्ध है, कृति त्यागराजा की है।

0: वो भी ऐप से। फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए राग तोड़ी, जो आदि ताल में निबद्ध है, कृति त्यागराजा की है।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में MS गोपाल कृष्णन का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं फिल्म बंधन से। संगीत से सजाया है आनंद राज आनंद ने, बोल है भैरव आर्यन की और गायक कलाकार है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की।

श्रोताओं, अब सुनते हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है बरसात की रात, रचना है आनंद बख्शी की और संगीत बद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म आई एम कलाम से, आवाज़ है केके की, संगीत निर्देशन है अभिषेक रॉय और रचना की है मनवेंद्र ने।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं चकतबेरी फिल्म का ये गीत। सुरों से सजाया है शान, पमेला जैन और उनके साथियों ने। संगीत है अक्षय बफीला की और रचना की है राजेश कुमार और सुप्रीतम सिंह ने।
1: Life is so beautiful.

0: want back those years.
1: अब लीजिए सुनिए समीर का लिखा ये गीत, जिसे गाया है मनोहर शेट्टी और प्रीता मजुमदार ने, संगीत से सजाया है आदेश श्रीवास्तव ने, और फिल्म का नाम है हमको इश्क ने मारा।

श्रोता आइए सुनते हैं केके की आवाज़ में ये गीत। संगीत निर्देशक है अभिषेक रॉय की और रचना है मनवेंद्र की।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में चलिए सुनते हैं ले चल अपने संग फिल्म का ये गीत। संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने और रचना की है देव कोहली ने।

स्पीडी सिंग्स इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है वरोनिका मेहता और एच धामी ने, और बोल है ऋषि रिच और वरोनिका मेहता की।

श्रोताओं, चलिए सुनते हैं बप्पी लहरी की आवाज़ में ये गीत। बोल है सुनील झा की, संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने, और फिल्म का नाम है लव स्टोरी 98।

हम आकाशवाणी के शिविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 11 बजे हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1317वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
1: जरा

0: सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
1: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि एक खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है,
1: जी
0: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए, इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी,
0: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम

0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ।
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
3: फूलों से नित हंसना सीखो,
2: भौरों से नित गाना,
3: भौरों से नित गाना,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: सीखो शीश झुकाना,
3: सीखो शीश झुकाना,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: कोमल भाव बहाना,
3: कोमल भाव बहाना,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
2: मिलना और मिलाना,
3: मिलना और मिलाना,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: जगना और जगाना,
3: जगना और जगाना,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
3: लता और पेड़ों से सीखो,
2: सबको गले लगाना,
3: सबको गले लगाना,
2: दीपक से सीखो जितना,
3: दीपक से सीखो जितना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
3: हो सके अंधेरा हरना,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: सच्ची सेवा करना,
3: सच्ची सेवा करना,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
3: जीवन पथ में बढ़ना,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
3: और धुएं से सीखो हरदम,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना,
3: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई, खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल। खोदेंगे भाई, खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खोदेंगे भाई, खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
4: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
5: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए, यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
4: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो, यही करो।
3: खोदेंगे भाई, खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
6: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काओ काओ काओ।
7: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
8: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
9: मेरा भी कुछ यही।

0: तो ये बात है। अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
1: क्या
2: क्या
1: क्या?
0: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
1: नीचा
0: सब तक सांप सुनाए। सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
3: यही करो तुम दोनों।
4: जो आज्ञा महाराज।
5: दम लगा के कू।
2: आयशा।
5: दम लगा के कू।
2: आयशा।
0: काम काम काम। शाबाश शाबाश। सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा पड़ा आराम। चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपी है ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
2: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
0: काम काम काम। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
2: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब। अरे वाह जनाब, ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा। छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
0: काम काम काम।
6: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: やばい。パピーハナピエトジャパイ。
1: カオカオカオ、あれ？イスネとバスラッヒパカルリ？
2: バウバウバウ、あれ？ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे, ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा, भाव भाव। कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: काँ काँ काँ, कुत्ते देख नहीं रहे।

0: शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
1: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
3: अब गर्मी का मौसम आ गया था। नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
0: काँ, काँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काँ।
4: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
5: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
0: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
5: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
4: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
0: खाओ, खाओ, खाओ।
4: तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोचकर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
4: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
5: मैं भी हैरान हूँ, कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
0: काँ, काँ, हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो।
3: पिए दूजा पानी, कब आएगी बरखा, कब बरसेगा पानी।

0: बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: श्रोता, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1317वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों पर विशेष कार्यक्रम चित्र गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनते हैं फिल्म प्लेयर से, जिसे लिखा है आशीष पंडित, आवाज़ें हैं मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी का ये गीत। गायक कलाकार है सोनू निगम और जसपिंदर निरोला। संगीत से सजाया है आदेश श्रीवास्तव ने और बोल है देव कोहली की।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है चेहरा, बोल है समीर की और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

बेकाबू इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, संगीत से सजाया है अनु मलिक ने और रचना की है निदा फलजी ने।

आनंद बख्शी का लिखा ये गीत अब सुनिए, जिसे गाया है अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज ने। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का

फिल्म बंदिश का ये गीत चलिए सुनते हैं। स्वर है कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीत है आनंद मिलन की और बोल है समीर की।

0: इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा यह कार्यक्रम चित्रगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं तेलुगु कार्यक्रम
1: आकाशवाणी श्री विजयवर्म केंद्रम। प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम्।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, चलिए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 meter അഥവാ 684 kHz-ൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था

0: कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगो वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the inauguration of services at Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. He added that with UPI now live in Greece, eligible customers can transfer money instantly, securely and seamlessly. Army Chief General Upendra Dwivedi today said the Indian Army derives its strength not from any single individual but from the unwavering faith of its soldiers, commanders, veterans, families and the citizens of the country. General Dwivedi said this while relinquishing the appointment as the Chief of Army Staff in New Delhi today. He emphasized that serving in the Indian Army for over 4 decades has been his greatest privilege.
2: भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने
3: आर स्टेडफास्ट सोल्जर्स रिमेन्स डिप्लॉयड अक्रॉस माउंटेन्स डेजर्ट्स ग्लेशियर्स फॉरेस्ट एंड चैलेंजिंग बॉर्डर रीजन सेफ गार्डिंग द नेशन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज दे हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल करेज एंड रेजिलियंस इन डाइवर्स ऑपरेशनल एनवायरमेंट्स फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट टू यूनाइटेड नेशन मिशंस देयर अनवेवरिंग डेडिकेशन डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म एग्जाम्पलीफाइज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस Operation Sindoor stands as a testament to their valor, operational excellence and steadfast commitment to the nation.
2: Operation Sindoor iska jwalant udaharan.
1: Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan has emphasized that the vision of Viksit Bharat cannot be achieved without developing the agriculture sector. Addressing the closing ceremony of Khet Bachao Abhiyan in Hisar, Haryana today, Mr. Chauhan informed that the government is working on developing a mobile app that will provide information regarding soil and the amount of fertilizer it requires. He urged farmers to use fertilizers and insecticides in their farms rationally in order to maintain the health of the soil. He also advised farmers to adopt the practice of organic farming. The government has extended the due date for filing of appeals before the Goods and Services Tax Appellate Tribunal, GSTAT, till the 31st of next month. According to the Ministry of Finance, an earlier notification dated September last year had notified today as the last date for filing of appeals before GSTAT. It is noted that the due date has been extended in view of the recent representations from various stakeholders highlighting technical difficulties due to the rush to file appeals on the GSTAT portal. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters as part of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls across the National Capital Territory

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम में कुछ गज़लों का। मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। हमारा नंबर है 9474234000। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार फिर से सुनिए, 9474234000। इस नंबर पर हमें अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गीत के बोल लिख भेजें ताकि हम आपके मन पसंदीदा गीत आप तक पहुंचा सकें। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला पैगाम हमें आया है नया गांव से वंश और विजय गुप्ता का। ये सुनना चाहते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अगली फरमाइश की है पूनम नीलम और प्रेशा ने, डिब्रूगढ़ असम से। फिल्म का नाम है खुद्दार।

दोस्तों अब सुनते हैं विजयपथ फिल्म का ये गीत, जिसे पसंद किया है बेबी अनमोल और आयांश ने, बलिया उत्तर प्रदेश से।

अक्षिता, संजना, सीमा और राजेश सुनना चाहते हैं फिल्म धड़कन का ये गीत। इन्होंने फरमाइश की है सुल्तानपुर दिल्ली से, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों चलिए सुनते हैं हमारी अगली फरमाइश, जिसे भेजा है राकेश चौहान, गोपाल चौहान और गीता चौहान ने इंदौर मध्य प्रदेश से। ये सुनना चाहते हैं टक्कर फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, आज के आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आपके इस रेडियो सखी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: Session today, the Sensex was down 63 points to 76,665, while the Nifty dipped 9 points to 23,937 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and four states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in a 4-3 penalty shootout. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम. यूरोबैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया. दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू. पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया. ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान. और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर. मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया. अब समाचार विस्तार से. यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है. ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है. एक रिपोर्ट.
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं. इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है. श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की. उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं. समाचार कक्ष से निखिल कुमार.
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है. इस

0: तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान के

0: केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने

0: या धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने एफएटीएफ की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने एफएटीएफ के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि एफएटीएफ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
4: मीडियम वेव 438.6 मीटर।

0: अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है तथा मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में बताया गया है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 2 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz पर इन्हीं स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।
1: विविध भारती
2: FM 3 विजयपुरम
3: 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 MHz पर। श्रोताओं अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना बाजीगर, अकेले हम अकेले तुम, साजन, बालमा, तेरे नाम, कयामत से कयामत तक, कभी हाँ कभी ना, सोल्जर, क्रिमिनल और सपने साजन फिल्म के गीत।
1: Non-stop music.

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास संगीत कार्यक्रम यूं ही गाते रहो, जहां हर दिल अपने साथ यादों की एक नई कहानी लेकर आता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खुशनुमा नगमे, जिसे सुनते ही दिल में प्यार और खुशियां दोनों ही खिल उठते हैं। दोस्तों, प्यार सिर्फ दो दिलों का रिश्ता नहीं, बल्कि हर उस रिश्तों का नाम है जहां विश्वास, सम्मान और अपनापन बरसता है। ऐसे ही खूबसूरत जज्बातों को सुरों में पिरोता है हमारा ये गीत।

दोस्तों, प्यार की कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है और बरसों बाद भी उनकी मिठास कम नहीं होती। ऐसे ही एक प्यारी सी धुन से सजा है ये गीत।

दोस्तों कहते हैं प्यार करना आसान है, लेकिन उसे सच्चे दिल से निभाना मोहब्बत की असली पहचान है। रिश्तों की इसी खूबसूरत सोच को अपने सुरों में सजाता है ये प्यारा सा गीत।

अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनिए सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में पहले सुनते हैं हरिहरन को। रचना खुमार बारा बंकी की है।

अब सुनिए, रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर को इसरार अंसारी का कलाम है।

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में हरिहरन रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा पहाड़ों की शाम। तमिल में शाम 5:00 महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महलेर उल्लगम। शाम 5:30 पर बंगला में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे। किसानवाणी कार्यक्रम में संध्या 6:00 डॉक्टर पीए बाला से की गई बातचीत का विषय रहेगा दूध उत्पादन बढ़ाने में चारा प्रबंधन। संध्या 6:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा शामे बहार। मौसम की जानकारी जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं सुनिए 7:15 पर। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवाणी में 7:30 पर दादा भाई नौरोजी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनिए देश की शान। रात्रि 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। 8:30 पर रोजगार

समाचार तत्पश्चात सुनिए गौरव गान। रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेश से आते हैं। रात 10 बजे ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन कार्यक्रम होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

थे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन कार्यक्रम होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स कार्यक्रम 5:55 पर, जिसमें जानकारी का विषय रहेगा मछली पालन में अतिरिक्त आहार व्यवस्था। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा दवा शीर्षक पर, जिसे आप सुनेंगे कल सवेरे 6:15 पर। रामचरित मानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:50 पर सुनिए मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। जन सूचनाएं सवेरे 7:00। 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागिनी। 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में कल सवेरे 7:30 पर वन महोत्सव 2026 हरित भविष्य की ओर विषय पर सहायक वन संरक्षक मोनिदीपा चौधरी से की गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर मन्ना डे और सीमा शर्मा को आप सुन पाएंगे। सवेरे 9:00 फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रकाश वाडेरा से बांसुरी वादन आप सुन पाएंगे। फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनिए गीत गाता चल सुबह 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु में महिलाओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे। मलयालम कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर, जिसमें कार्यक्रम होगा शस्त्र लोकम। 1:10 पर महफिले कव्वाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे महेंद्र कपूर, रानी रूपलता और अर्शी बेगम। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारे स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर स्थानीय सभा जारी रहेगी हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम सुनिए यूं ही गाते रहो दोपहर बाद 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए लम्हे शाम 4:30 पर। 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 4:45 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म दीवाना सनम से। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और विनोद राठौर की। फैज़ अनवर का लिखा गीत था, मिलिंद सागर का संगीत था। आइए अब सुनते हैं बेवफा सनम फिल्म का एक गीत, जिसे गाया है सोनू निगम ने। बोल रानी मलिक के हैं, धुन बनाई है मिलिंद सागर ने।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं आशा भोसले और अभिजीत को फिल्म सनम हरजाई में। शब्द सावन कुमार के हैं, उषा खन्ना ने तर्ज बनाई है।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ अमुदम वणक्कम नेर्गले।

0: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार और साथियों आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। साथियों मंजिलों का इंतजार नहीं सफर का मजा लीजिए, हर गुजरते पल के साथ खुद को नया कीजिए, दो लम्हों के बीच की हर घड़ी का आनंद लीजिए, हंसते गाते जीने की हर वजह ढूंढ लीजिए, बहुत मुश्किलों से मिली ये जिंदगी उस रब का शुक्र कीजिए, रोते रह जाने से कुछ ना होगा, वक्त के साथ इसे बेहतरीन कीजिए। जी हाँ साथियों, बेहद खूबसूरत कविता की ये पंक्तियाँ हमें जीवन का सार बताती हैं और हमें इस बात को भी सिखाती हैं कि जीवन में वक्त की क्या अहमियत है। जी हाँ साथियों, आज की इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और साथियों आज आपको बताना है, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए मुर्गी घर में एक दिन में कितने घंटे प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथियों हम प्रश्न एक बार फिर दोहरा देते हैं, भाइयों आज आपको बताना है कि अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए मुर्गी घर में एक दिन में कितने घंटे प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें, कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना

0: सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, हम जैसा कि सभी जानते हैं कि गत 1 जून से 30 जून तक भारत सरकार के द्वारा खेत बचाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान का आज आखिरी दिन था और ये अभियान भारत सरकार की कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत किसानों को मुख्य रूप से संतुलित उर्वरकों के उपयोग के बारे में जागरूक करना है, साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। अब तक इस अभियान ने लाखों किसानों तक अपनी पहुंच बनाई है और कई प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए। देश के लाखों किसान भाइयों ने इस अभियान में अपनी भागीदारी दिखाई और इस अभियान का लाभ उठाया। साथियों, ये तो थी कुछ बातें खेत बचाओ अभियान के संदर्भ में। और अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर पीए बालाजी से, और इनके साथ आज बातचीत का विषय रहेगा दूध उत्पादन बढ़ाने में चारा प्रबंधन। तो चलिए साथियों, करते हैं इनसे मुलाकात और लेते हैं इस विषय में ये अहम जानकारी।
4: डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: नमस्कार सर, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
4: डॉक्टर साहब, जहाँ तक हमारे इन द्वीपों में पशुपालन का सवाल है, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि इसकी क्या स्थिति है?
5: देखिए, हमारे यहाँ पर मवेशियाँ 45,000 के करीब है, भैंस है लगभग 8,000 और गोट्स यानी बकरे और बकरियाँ जो है लगभग 65,000 है। पॉपुलेशन तो काफ़ी है, लेकिन इसमें क्या है, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। हमें मवेशी से मतलब कैटल और बफलो से दूध मिलती है लगभग 113 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जबकि हम यही अगर कंपेयर करें हमारे मेनलैंड भारत के साथ, वहाँ पर है 375 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो इसे हम देख सकते हैं बहुत कम हम यहाँ पे उत्पादकता है हमारे जानवरों में। उसी तरह हमें और एक चीज़ देखना है कि 16 लाख लीटर दूध हमें हर साल मंगाना पड़ता है। कैसे मंगाते हैं? ड्राई फॉर्म में मंगाते हैं और यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पे दूध उसको बनाया जाता है और बाद में फिर यहाँ पे बेचे जाते हैं। और कुछ तो है कि जैसे टेट्रा पैक में जैसा आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे देखना चाहिए कि जो मवेशियों से हम चाहते हैं कि मांस और जो दूध हमें चाहिए, इसके आपूर्ति के लिए हमें चाहिए कि उनको बढ़िया से खिलाया जाए। और हमारे यहाँ पे दाना चारा के प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है कि जो हम जानवर को खिला सके, इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें मेनलैंड से मंगाना होता है। अभी लगभग 99% जो है ग्रीन फोडर की डिमांड है, मतलब जो हमारे पास कम है, डेफिसिट है, और लगभग 50-52% कमी है हमारे ड्राई फोडर, और आखिर में जो दाना वगैरह है उसकी आपूर्ति के लिए हमारे यहाँ पे डेफिसिट यानी डिमांड है लगभग 97%, इसको हमें आपूर्ति करना पड़ेगा। इसके अलावा हम अगर एक होलसमली देखें, हमें सबसे ज़्यादा डिमांड यहाँ पे है हमारे ग्रीन फोडर की, क्योंकि हमारे भारत में जो है 70% जो मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध की उत्पादन होती है वो सिर्फ और सिर्फ फोडर से होती है, मतलब सूखा चारा और हरा चारा। तो इसीलिए हमें क्या है, फोडर को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमारे इस आइलैंड्स में प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए।
4: बहुत बहुत बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हमारे यहाँ पर दूध की जो आपूर्ति है उसके लिए हम मुख्यतः मुख्य भूमि पर ही निर्भर है। अंडे और मुर्गियों का जहाँ तक सवाल है, तो कुछ हद तक हम इसमें हमारी आत्मनिर्भरता है, लेकिन दूध उत्पादन अभी भी बहुत कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है?
5: देखिए, सबसे मेन चीज़ है, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हमें क्या है, कॉन्क्रीट भी यूज़ करनी होती है, पत्थर वगैरह, और साथ में क्या है, सीमेंट वगैरह भी यूज़ होता है, ग्रेवल वगैरह भी यूज़ होता है, रेत भी यूज़ होती है। अब अगर ये तीनों चीज़ में अगर जो प्रोपोर्शन हमें यूज़ करनी होती है उससे अगर थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए तो बिल्डिंग क्या धराशायी हो जाएगा, कुछ दिन बाद ही वो टूटने लगेगा। तो उसी तरह हमें क्या करना होता है, एक जानवर को बैलेंस्ड फीडिंग करना होता है, तो संतुलित आहार देना जरूरी है, क्योंकि संतुलित आहार से ही हम जानवरों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उस जानवर को समझें, उस जानवर की स्थिति क्या है, मतलब वो मोटा है, पतला है या मध्यम है, तो हमें वो समझना चाहिए। अगर पतला है तो उसको तो पहले उसका बॉडी कंडीशन मतलब उसको थोड़ा सा स्वस्थ पहले ठीक करना है, उसके बाद में हमें सोचना है कि उससे हम कैसे उत्पादकता ले सकते हैं ज़्यादा। दूसरी बात, अगर मोटा है तो उसको क्या हमें मीडियम लाना है, क्योंकि मोटा जानवर में भी क्या है, प्रोडक्शन कम होता है। उसमें क्या है,

0: जो दाना चारा खा रहा है वो बैलेंस नहीं है, इस वजह से ही वो ज़्यादा मोटा है। और हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि उस जानवर का स्थिति क्या है, वो जानवर कौन सा कंडीशन में है, मतलब छोटे बच्चे हैं तो वृद्धि होगी, अगर सोचे दूध देने वाला या गर्भवती
1: गर्भवती
0: है
1: है
0: तो उसके लिए भी ज़रूरत क्या है, जानवर के हिसाब से हमें उसको समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। उसके बाद हमें क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच यानी वैज्ञानिक विधि से उनको खिलाना पड़ेगा, मतलब हमें तय करना पड़ेगा कि इस जानवर को क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है और हमें कितनी उनको खिलानी है, कंसंट्रेट कितनी देनी है, फॉडर कितनी देनी है और मिनरल मिक्सचर वगैरह और विटामिन्स कितनी देनी है इनको। तो इसके लिए भी क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर जो दाना है या चारा है या जो भी चीज़ें हैं उसमें कितना पोषक तत्व है, ठीक है। और इस पोषक तत्व में जैसा कि मेनली हम जानते हैं वसा मतलब फैट, प्रोटीन होती है और आखिर में कार्बोहाइड्रेट यानी
1: कार्बोहाइड्रेट।
0: शर्करा वगैरह जो होती है, तो ये तीनों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स, क्या होता है कुछ विटामिन तो जानवर खुद अपना पेट में बना लेते हैं और कुछ विटामिन जो होता है हमें बाहर से देना पड़ता है सप्लीमेंट या
1: जी हाँ,
0: एडिटिव के हिसाब से, तो उसका भी हम ध्यान दे सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो जानवर की जो अवस्था है उसे पहचान कर ही उन्हें दाना या जो चारा है वो उसे दिया जाना चाहिए।
0: जी
1: अगर गर्भवती है तो उसे क्या देना चाहिए,
0: जी
1: बच्चा है तो उसे क्या देना
0: जी
1: चाहिए, दूध दे रहा है तो उसे क्या देना
0: जी
1: चाहिए। तो ये जो फोडर या जो दाना चारा खिलाते हैं, इसका कोई
0: जी
1: थंब रूल है कैसे किसान समझें कि कितना किसको कैसे देना चाहिए अगर?
0: देखिए, सबसे मेन बात है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या है, जल्दी ग्रो करना है, वृद्धि जल्दी होनी है उसके, तो उसमें नॉर्मली देखा जाता है कि जो मतलब बचपन में सबसे ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ होता है और वो क्या होता है लगभग 3 महीने से लेकर आपका यूँ कह लीजिए 10 महीने के करीब, तो उस समय में क्या होता है प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और एनर्जी की कम ज़रूरत होता है, तो उस समय में हमें क्या है,
1: खली वगैरह
0: हाँ
1: जो है।
0: खली तो वो हम ज़्यादा दे सकते हैं, जैसा कि आप कहोगे मूंगफली की खली यहाँ पे भले ही ना मिले लेकिन हम वो मेनलैंड से मंगा सकते हैं, फिर मस्टर्ड यानी आपकी सरसों की खली और हमारे यहाँ पे जो है नारियल, तो हम खोपरा खिला सकते हैं। खोपरा में क्या होता है, नॉर्मली खोपरा में तेल निकालने के बाद में जो खोपरा यानी भूरा जो बचा रहता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो लगभग 26% प्रोटीन इसमें होता है और जो सरसों है उसमें लगभग 38% और मूंगफली जो होता है उसमें हम थंब रूल पकड़ के चलते हैं कि लगभग 43 से लेके 45, और आखिर में आजकल जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है वो है आपका सोयाबीन मील। सोयाबीन मील क्या होता है, हमें एक बार टेस्ट करके देखना पड़ता है कि उसमें कितना प्रोटीन है, क्योंकि इसका प्रोटीन कम से कम 45 से लेकर 55-56% तक जाती है, तो इसलिए हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा कितने हम दे रहे हैं, तो ये प्रोटीन जो है हमें काफ यानी बच्चों का उसमें ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में जो प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेग्नेंट में क्या है हमें लगभग अगर गाय है तो लगभग 6 महीने तक हमें कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता है, लेकिन 6 महीने के बाद में एक समय होता है कि उसके बाद हमें उसको मतलब कंसंट्रेट यानी दाना हमें ज़्यादा देना पड़ता है, खल हमें ज़्यादा देना पड़ता है, यूँ लगा लीजिए कि लगभग 1 केजी से लेके 1.5 केजी आपको बढ़ाना है प्रति महीना में, ठीक है। और जैसे आपका गोट्स है, गोट्स में हम यूँ मान के चलते हैं कि 100 ग्राम दाना जो है हमें हर दिन देना होता है और इसके ऊपर में जो ये ब्राउज करके मतलब ये बाहर में जाके खाते हैं
1: चरते हैं
0: हाँ
1: जो।
0: चरते हैं जो, ये उसके अलावा हमें 100 ग्राम हमें हर दिन देना होता है, लेकिन जब ये प्रेग्नेंट होते हैं उस समय में क्या होता है 200 से लेकर 250 ग्राम तक हमें बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मेनली हम अगर देखें कि जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसका जो बच्चा है अंदर में जो फिटस बच्चा है वो क्या होता है, अगर पूरा प्रेगनेंसी टाइम को आप 3 भागों में डिवाइड करें, पहला 2 भाग के जो समय होती है उसमें ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन जो आखिरी जो समय होता है उसमें क्या होता है लगभग 4 गुना बढ़ता है। एक गाय का बच्चा अगर उसका प्रसव का समय में उसका 30 केजी का वेट होता है या 28 केजी का वेट होता है, तो 7 केजी का वजन जो है वो पहला 2 भाग में और लगभग 20-21 केजी आखिर में बढ़ेगा।
1: तो उस समय
0: जी
1: पोषण की ज़्यादा ज़रूरत है।
0: इसलिए उस समय पोषण की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं कह रहा था लगभग 6 से 6.5 महीने तक आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, मगर लास्ट में जो 3 महीने के करीब होता है 3-3.5 महीना उस टाइम या उस समय में आपको देना ज़रूरी है लगभग 1 केजी से 1.5 केजी ज़्यादा दाना हर दिन एक पशु को देना ज़रूरी है। और लैक्टेशन, और दूध के लिए हम मानते हैं कि भैंस में जो है प्रति 2 किलो या 2.5 किलो हम 1 किलो दाना देना पड़ेगा और जो आपका गाय है 2.5 से 3 किलो प्रति दूध के हिसाब से 1 किलो दाना हमें ज़्यादा देना पड़ता है, और इनका जो पीक यील्ड या सबसे ज़्यादा जो दूध प्रोडक्शन होता है ये होता है आपका 3 महीने से लेकर लगभग 5 महीने तक, टोटल 8 महीने लगभग। उसके बाद में क्या है उसको ड्राई भी कर सकते हैं, या हमारे एक टारगेट होता है कि हर साल हम एक बच्चा हम प्राप्त करें, तो इसके लिए हमें वो समय में एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है और ऊपर से कुछ

0: मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं, वो भी होना देखा गया है। जैसे कि आपका कीटोसिस हो गया या एसिडोसिस हो गया, ये भी हो जाता है, और मिल्क फीवर जो कहते हैं, ये सब देखा गया है। तो इस टाइम हमें क्या करना होता है, शुरू में उसका बच्चादानी जितना जल्दी छोटा नहीं होता पेट में बच्चा देने के बाद, इसलिए उस टाइम पे क्या करना होता है, ज़्यादा घास वगैरह नहीं खा सकता है, दाना हमें देना ज़रूरी होता है। शुरू के जो 3 महीना है बहुत बढ़िया से खिलाना पड़ता है, और उस टाइम पर हमें क्या करना होता है, कैल्शियम वगैरह भी देना होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से फीड मैनेजमेंट किया जाए जानवरों को, इस बारे में बताया। अब चलते चलते बताएं कि हमारे इन द्वीपों में जहाँ तक फोडर रिसोर्सेस या जो चारा वगैरह जो जानवरों को देते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी या इसकी उपलब्धता कितनी है, और इसमें क्या किया जा सकता है?
0: देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है, घास जो यहाँ पे ज़मीन में उगती है या जंगल में है, खरपतवार भी है, खरपतवार भी हम खिला सकते हैं, क्योंकि खरपतवार जब तक वो पॉइजनस नहीं है तब तक हम उसको ये नहीं सोच सकते कि ये ख़राब है, तो सारे चीज़ हम खिला सकते हैं जानवर को। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जो घास वगैरह है ये बहुत कम है, हमें और ज़्यादा चाहिए। और ये ज़्यादा हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड हमें चाहिए, यहाँ पे हम उगाएं और जानवर को खिलाएं। यहाँ पे नेपियर और बाजरा के हाइब्रिड हैं हमारे पास भी है, और हमारे यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री है हमारे द्वीपों में उनके पास भी है। तो हमारे पास देखिए क्या क्या है, एक तो है कोम्बू नेपियर, यानी बाजरा नेपियर का हाइब्रिड। इसमें क्या आता है, कोम्बू 4, 5 एंड 6, मतलब को 4, को 5 एंड 6। इसके अलावा DHN 6 भी है, ये भी नेपियर बाजरा हाइब्रिड का ही है वैरायटी। इसके अलावा पैराग्रास है और गिनी ग्रास है। ये जो नेपियर हाइब्रिड मैंने बताया है, ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन मिलता है। शुरू में क्या है, 45 डेज के बाद में आप इसको देखे कि कैसा प्रोडक्शन है इसका, और उस समय उसको थोड़ा सा नर्चरिंग भी करें, और ये पहला कट जो है आप 2 महीना के बाद ले सकते हैं, मतलब 60 डेज के बाद, और उसके बाद प्रति 45 से 50 दिन के बाद में उसका कितना मतलब ग्रोथ है वो देखने के बाद 45 to 50 डेज के बाद में आप ले सकते हैं। सबसे खूबसूरती की बात है कि ये मल्टी कट है, मतलब ये साल भर आते रहेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब बारिश वगैरह कम होती है ना, तो उस समय हो सके तो थोड़ा इरीगेशन यानी पानी होना की थोड़ा का देना पड़ेगा। पैराग्रास और गिनी ग्रास, ये दो घास जो है, थोड़ा सा नमक वाला पानी जो है, जो बैक वाटर जो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी बीच में सुनामी के बाद, उस जगह पे भी ये आप आराम से उगा सकते हैं। ये जो पैराग्रास, गिनीग्रास और कोम्बू नेपियर, ये सारे इसलिए मतलब चूज़ किया गया, जो मेनलैंड से इसलिए लाया गया, क्योंकि ये सारे चीज़ ना आप एरिकनट यानी सुपारी पेड़ों के बीच में भी लगा सकते हैं, और नारियल पेड़ जो है उसके बीच में भी लगा सकते हैं, और आपको उतना ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पानी की मात्रा भी अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि इतना सूखेगी नहीं जल्दी, क्योंकि प्लांटेशन के बीच में है। और इसके अलावा ये जो प्लांट्स है ये सारे जो है दलहन जातीय नहीं है, मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ा कम है, इसलिए इसके साथ में काउपी यानी लोबिया वगैरह लगा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया होगा कि लोबिया का साथ मिला के आप थोड़ा सा खिलाएं ना इसको, तो इसको दाना देने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो दाना वगैरह जो बेचते हैं ना, जो यहाँ पर
1: सूखा
0: कैटल फीड सोच के, हाँ कैटल फीड, ये आपको देने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ है जिंदा बल्ली, जिंदा बल्ली भी बहुत ही पौष्टिक होता है और ये हाई प्रोटीन वाला है, तो इसको आप बकरियों को भी खिला सकते हैं। जो जानवर, जो मवेशी आपको दूध दे रही है उसको लगभग 30 kg खिला दीजिए, और जो दूध नहीं दे रही है उसको 20 kg दे दीजिए। ये कैटल और बफेलो दोनों के लिए, मतलब गाय और भैंस के लिए दोनों के लिए ये है। और ये सीजनली भी ना आप थोड़ा ऐसे इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे, सीजन के आप अगर जैसा ये नेपियर ग्रासेस जो है या पैरा ग्रासेस, ये आप सुखा के रख सकते, और जो हम देखते हैं कि जब बारिश होती है ना उस समय तो ये उगती नहीं है, क्योंकि उसको बाद ही लगाया जाता है, तो उस समय में बारिश में क्या होता है, आपके जानवर जो आप बाहर में ज्यादा चराने के लिए नहीं भेज सकते, उस समय जो ये सूखा वाला जो है इसको आप क्या है काट के सुखाए, इससे क्या होगा बोरी में भर के आराम से रख सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और उस समय में आप क्या कीजिए, ये बोरी खोल के उनको खिलाइए, और साइलेज बना सकते हैं। साइलेज मतलब एक किस्म के अचार जैसा होता है, इसको प्रिजर्व करते हैं, ये क्या है हरा जो है उसी को थोड़ा सूखा के हम इसको प्रिजर्व करते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स मतलब इसमें क्या है, आपको खेत में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, प्लास्टिक ट्रे में आप लगा सकते हैं, और इसमें क्या होता है 10 से 12 दिन में तैयार हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन हमारे आइलैंड कंडीशन में अगर इसमें थोड़ा ग्रोथ अगर कम भी हो तो 15 दिन में तो आप खिला ही सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है, आपको ऐसा ट्रे लगाइए, अगर आप 12 ट्रे लगाएंगे तो 12 दिन में एक एक ट्रे आप उसको एक जानवर को खिला सकते हैं।
1: तो ये सब मैनेजमेंट इस तरह से चारे के संदर्भ में किया जा सकता है, और साल भर जानवर को, जैसे आपने शुरू में बताया कि अगर जब तक हम अच्छा से उसे खिलाएंगे नहीं तब तक जो वांछित उत्पादन है वो मिल नहीं पाएगा।
0: नहीं जी।
1: तो डॉक्टर बाला, आपसे इतनी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद महोदय, थैंक यू।
2: दूध उत्पादन बढ़ाने में चारा प्रबंधन। किसान साथियों, अभी आपने इस विषय में ये जानकारी हासिल की और इस बारे में बता रहे थे

डॉक्टर पीए बालाजी। उम्मीद करते हैं कि बताई गई बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी और आप इस जानकारी से अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। साथियों, इतनी बातों और जानकारियों के बाद अब कुछ मनोरंजन हो जाए, तो चलिए आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

बायो गीत आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं इसे आपने ज़रूर पसंद किया होगा। लेकिन अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं पावर टिलर की उपयोगिता के संदर्भ में। तो चलिए साथियों, लीजिए ये जानकारी।

हमारे देश में भी पिछले कुछ वर्षों से पावर टिलर काफी प्रचलित हुआ है और आप इसकी उपयोगिता के बारे में समझने लगे हैं। पावर टिलर सचमुच में किसान का एक बहुत बड़ा दोस्त होता है। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि सामान्य व्यक्ति द्वारा सामान्य ज्ञान प्राप्त करके पावर टिलर को चलाया जा सकता है, अर्थात इसमें किसी विशेष गहन प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। दूसरा यह कि पावर टिलर आकार एवं शक्ति में छोटा होने के कारण अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता है और इस प्रकार ऊर्जा का नुकसान बहुत कम होता है। तीसरी बात यह है कि पावर टिलर चूंकि छोटा होता है और कम शक्ति का होता है, इस कारण ट्रैक्टर की अपेक्षा यह सस्ता भी पड़ता है। आकार में छोटा होने के कारण इसे छोटे आकार के खेतों में बिना किसी कठिनाई के आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। पहाड़ी एवं ढालू जमीन में बनाए गए सीढ़ीनुमा खेतों पर भी पावर टिलर का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है, जबकि इन जगहों पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल लगभग नहीं हो सकता। अब जब हम अपने द्वीपों की बात करते हैं तो यहाँ पर पावर टिलर की उपयोगिता और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ढालू जमीन में खेत छोटे छोटे आकारों के हैं। छोटे छोटे आकार के खेत होने के कारण इनमें ट्रैक्टर का उपयोग कुशलतापूर्वक हम नहीं कर पाते और इसमें कई प्रकार की कठिनाइयों का भी हमें सामना करना पड़ता है। यहाँ यह भी सच है कि अधिक वर्षा के कारण मिट्टी भारी हो जाने से कमजोर पशु भी इनमें ठीक से काम नहीं कर पाते। ऐसे में पावर टिलर यहाँ पर खेती के काम में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। पावर टिलर 6.5 से 12 अश्व शक्ति का दो पहियों वाला डीजल से चलने वाला इंजन यंत्र है, जिसमें हल, हैरो, क्लीवेटर, ट्रॉली आदि लगाकर विभिन्न कृषि कार्य किए जा सकते हैं। धान की खेती के लिए खेत तैयार करने हेतु पावर टिलर बहुत ही उपयोगी है। आपने देखा होगा कि छोटे खेतों में बार बार ट्रैक्टर चलाने से पहियों के वहीं घूमने से गड्ढे पड़ जाते हैं और प्रायः कीचड़ में फंस जाते हैं, किंतु पावर टिलर का भार कम होने तथा रोटरी टिलर को आगे की दिशा में ढकेलने की प्रवृत्ति के कारण कीचड़ बनाने वाले खेत में इसके फंसने की संभावना कम हो जाती है। एक हेक्टर खेत में रोटावेटर, क्लीवेटर आदि चलाने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं, जबकि सूखी जुताई में 11 से 15 घंटे का समय लगता है। पावर टिलर द्वारा विभिन्न दवाओं का छिड़काव एक अन्य विशेष यंत्र की सहायता से 500 लीटर प्रति घंटे की दर से किया जा सकता है। इस तरह सामान्यतः एक घंटे में एक हेक्टर भूमि का छिड़काव हो सकता है। फसल की कटाई, मड़ाई एवं ओसाई भी हम पावर टिलर की सहायता से कर सकते हैं। चारे की मशीन चलाना, पंप से पानी खींचना, इन कामों को भी हम पावर टिलर की मदद से कर सकते हैं। पावर टिलर में ट्रॉली लगाकर 10 क्विंटल तक सामान हम एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों, हम देख सकते हैं कि पावर टिलर खेतीबाड़ी में काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकता है। किसान भाइयों, हम खेतीबाड़ी में आर्थिकी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जहाँ खरीदने में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, वहीं ट्रैक्टर की मरम्मत और देखभाल में भी ज़्यादा खर्च होता है, जबकि पावर टिलर इसकी तुलना में कम खर्च पर हमें मिल जाता है और इसकी देखभाल में खर्च भी कम होता है। अतः हम आपसे कहेंगे कि हमारे इन द्वीपों की परिस्थितियों में पावर टिलर

पावर टिलर की उपयोगिता, अभी आपने इस विषय में ये जानकारी हासिल की। और भाइयों, इसी के साथ कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर बताने का। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा आज का प्रश्न था, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए मुर्गी घर में एक दिन में कितने घंटे प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। और साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए मुर्गी घर में एक दिन में 14 से 16 घंटे तक प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसके लिए बिजली के बल्बों का प्रयोग किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: और इसी के साथ बातों और जानकारियों की किसानवाणी की इस महफिल को आज के लिए हम यहीं पर देते हैं विराम। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ नई बातों नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म गीतों का कार्यक्रम शामे बहार।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं मैन नॉट अलाउड फिल्म का एक गीत जिसे गाया है सुनिधि चौहान और शान ने। शाहीन इकबाल के बोल हैं, तर्ज बनाई है संजीव श्रीवास्तव ने।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म दस से। आवाजें हैं के और शान की, पंछी जालौनवी के शब्द हैं, विशाल शेखर का संगीत है।

अब सुनिए, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री और बेला सिंधे को फिल्म पहेली में एमएम करीम का संगीत है, रचना गुलजार के हैं।

वीर जारा। इस फिल्म में सुनते हैं लता मंगेशकर और सोनू निगम की मिलीजुली आवाज़ों में एक गीत। गीत जावेद अख्तर के हैं। इस गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

अब सुनिए जेम्स फिल्म का एक गीत जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गीत व संगीत नितिन रायकवार के हैं।

0: सांसों से सांसों का समझौता सस्ता है।
1: कुछ भी हो लेकिन तेरा मेरा रिश्ता है।

0: Dutch Bay.
1: और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए चॉकलेट फिल्म का एक गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम ने। गीतकार हैं मयूर पुरी और संगीतकार हैं प्रीतम।
2: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat.

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार संपन्न हुआ। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

युवाणी में 7:30 पर दादा भाई नौरोजी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनिए देश की शान। रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा, चित्रपट संगीत। रात 8:30 पर रोजगार समाचार, तत्पश्चात सुनिए गौरव गान। रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा, संदेशे आते हैं। रात 10 बजे ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। कल प्रातः 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा मछली पालन में अतिरिक्त आहार व्यवस्था। 6:10 पर जलयानम का यात्रा कार्यक्रम इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा दवा शीर्षक पर, जिसे आप सुनेंगे कल सवेरे 6:15 पर। रामचरित मानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:50 पर सुनिए मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। जन सूचनाएं सवेरे 7 बजे। 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागिनी। 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में कल सवेरे 7:30 पर वन महोत्सव 2026 हरित भविष्य की ओर विषय पर सहायक वन संरक्षक मोनिदीपा चौधरी से की गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। कल सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रकाश वाडेरा से बांसुरी वादन आप सुन पाएंगे। फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनिए गीत गाता चल सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु में महिलाओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे। मलयालम कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर, जिसमें कार्यक्रम होगा शास्त्रलोकम। 1:10 पर महफिले कव्वाली कार्यक्रम आप सुनेंगे। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर।

दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज पर स्थानीय सभा जारी रहेगी हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम सुनिए, यूं ही गाते रहो 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए लम्हे, शाम 4:30 पर 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनिए बहारों की शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम होगा। 5:30 पर बंगला में आप आधुनिक गीतों का आनंद ले पाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6 बजे डॉक्टर वी दामोदरन से की गई बातचीत का विषय रहेगा अदरक की जैविक खेती। संध्या 6:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए दर्द भरे नगमे। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं सुनिए 7:15 पर। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। 7:30 पर युमाणी में कार्यक्रम सुनिए गीतों भरी कहानी। रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार रात 8:30 पर। रात 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सरगम तथा FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर रात 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ग्रीस में यूपीआई सेवा शुरू होने से भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र को वैश्विक मजबूती मिली। यूरो बैंक की नई पहल से अब भारत में धन भेजना होगा सुरक्षित और सस्ता। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उपभोक्ताओं को ई वेस्ट प्रबंधन नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। और शिक्षा विभाग ने अंशकालिक कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति को सहमति दी, पूर्व प्रदर्शन के आधार पर फिर से रोजगार मिलेगा।

सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। यह पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफ़ी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र है और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग 4 दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन रणनीति क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने इसके बल पर भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और दीर्घकालिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके कमांड असाइनमेंट में रेगिस्तानी क्षेत्र में एक बख्तरबंद रेजिमेंट, पश्चिमी मोर्चे में एक बख्तरबंद ब्रिगेड और जम्मू कश्मीर में एक आतंकवाद

विरोधी बल शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली, जो भारतीय सेना की प्रमुख स्ट्राइक फॉर्मेशन में से एक है। बाद में उन्होंने दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों तथा औपचारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में जनता की अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। श्री गडकरी ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, तेज गति से वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, लेन अनुशासन बनाए रखने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है ई वेस्ट प्रबंधन नियम और शिक्षा विभाग। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पिछले दिनों श्री विजयपुरम स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सम्मेलन कक्ष डॉलीगंज में ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2022 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, बल्क उपभोक्ताओं, छोटे ई वेस्ट उत्पादकों तथा खुदरा विक्रेताओं ने भाग लिया। इसमें विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के संचालक, रिटेलर, रिपेयर एवं सर्विस सेंटर संचालक तथा होटल व्यवसायी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य वैधानिक प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा द्वीप समूह में विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन को बढ़ावा देना था। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को ई वेस्ट के पृथक्करण, सुरक्षित भंडारण, अभिलेख संधारण तथा केवल अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से उसके निस्तारण की जिम्मेदारियों से अवगत कराया। अधिकारियों ने विशेष रूप से नियम 8 के तहत बल्क उपभोक्ताओं के दायित्वों की जानकारी देते हुए बताया कि ई वेस्ट का निस्तारण केवल पंजीकृत उत्पादकों, रिफर्बिश्ड अथवा रिसाइक्लर्स के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। साथ ही ई वेस्ट के उत्पादन, भंडारण, परिवहन एवं निस्तारण का समुचित रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से आज 4 कर्मचारी अपनी लंबी सेवाओं के उपरांत सेवानिवृत्त हो गए। प्रसार भारती में कार्यरत सहायक लेखाकार AK जमीला, वरिष्ठ तकनीशियन MK कन्नन, वरिष्ठ तकनीशियन पेत्रुस डुंगडुंग तथा सहायक लेखाकार सूरा किरकट्टा ने आज सेवा से औपचारिक रूप से विदाई ली। इन सभी कर्मचारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान आकाशवाणी केंद्र के प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहायक लेखाकारों ने वित्तीय एवं लेखा संबंधी कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाया, जबकि वरिष्ठ तकनीशियनों ने प्रसारण से जुड़े तकनीकी कार्यों में निरंतर योगदान दिया। सेवानिवृत्ति के अवसर पर सहकर्मियों एवं अधिकारियों द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके सेवाकाल की सराहना की गई। इस अवसर पर उप महानिदेशक सी सुब्बा राव सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके कार्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण को याद करते हुए भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम के अंत में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके उज्जवल भविष्य, स्वस्थ जीवन और सुखद सेवानिवृत्ति जीवन की कामना की गई। शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पार्ट टाइम कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा निदेशालय ने विभागीय आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यह आदेश जारी किया है। इस निर्णय के तहत पूर्व शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्यरत रहे अंशकालिक पूर्व प्राथमिक शिक्षक, अंशकालिक पूर्व प्राथमिक आया सफाई कर्मचारी, अंशकालिक शिल्प प्रशिक्षक तथा अंशकालिक परिचारकों को यदि उनका कार्य संतोषजनक रहा हो तो उसी विद्यालय में तत्काल

0: प्रभाव से पुनः नियुक्त किया जाएगा जहां वे पूर्व में कार्यरत थे। यह पुनर्नियोजन नए शैक्षणिक सत्र में लागू रहेगा। शर्तों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय के पूर्व प्राथमिक अनुभाग में अंशकालिक पूर्व प्राथमिक शिक्षक एवं आया की पुनर्नियुक्ति से पूर्व न्यूनतम 5 विद्यार्थियों का नामांकन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने विद्यालयों में पात्र अंशकालिक कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पुनर्नियुक्त कर्मचारियों की समेकित कार्य ग्रहण रिपोर्ट 10 जुलाई तक निदेशालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाए ताकि विभागीय स्तर पर औपचारिक आदेश जारी किए जा सके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित महाविद्यालय में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत संचालित अंडमान कॉलेज द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यह निर्णय लिया गया है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया कॉमन कॉलेज प्रवेश पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रीस में यूपीआई सेवा शुरू होने से भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र को वैश्विक मजबूती मिली। यूरो बैंक की नई पहल से अब भारत में धन भेजना होगा सुरक्षित और सस्ता। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व। जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उपभोक्ताओं को ई वेस्ट प्रबंधन नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। और शिक्षा विभाग ने अंशकालिक कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति को सहमति दी। पूर्व प्रदर्शन के आधार पर फिर से रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खराब मौसम के कारण वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे आज 30 जून से 2 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी जॉली बॉय मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल बुधवार 1 जुलाई को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और यह जलयान अगले दिन 2 जुलाई को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी रानी चंगा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल 1 जुलाई को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल बुधवार 1 जुलाई को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से अपनी यात्रा आरंभ करेगा। ये जलयान अगले दिन 2 जुलाई को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए चलेगा। ये

दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रीट आइलैंड कल 1 जुलाई को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप की यात्रा पर जाएगा तथा इस जलयान की वापसी अगले दिन 2 जुलाई को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। श्रोताओं, प्रशासनिक कारणों से एमवी नालंदा की नानकौरी होते हुए कैंबल बे की कल 1 जुलाई की होने वाली यात्रा को रद्द कर दिया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इसी टिकट पर अगली यात्रा कर सकते हैं। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

अब सुनिए जन सूचनाएं। गैरकानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। नंबर है 1122-3192-232-100, 0312-232-4000। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म लकी से। इस गीत को गाया था आशा भोसले और साथियों ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म नील एंड निकी से। श्वेता पंडित और सलीम मर्चेंट की आवाज़ें हैं, सलीम सुलेमान का संगीत है, इरशाद कामिल के बोल हैं।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:30 हुए हैं। अब सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लताराज नंदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस माह का पांचवा मंगलवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम देश की शान।

दोस्तों, आज के इस देश की शान कार्यक्रम में हम बात करेंगे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे। उन्हें भारत का वृद्ध पितामह कहा जाता है। वे एक महान राष्ट्रवादी नेता, समाज सुधारक, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापकों में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर सन 1825 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नौरोजी पालनजी डॉर्टी था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया, जिसके कारण उनकी माता ने कठिन परिस्थितियों में उनका पालन पोषण किया। उनकी माता मानेकबाई ने उन्हें शिक्षा और संस्कारों का महत्व समझाया। दादा भाई नौरोजी बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बंबई में प्राप्त की और आगे चलकर एल्फिनस्टोन कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपनी

दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वे एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित और प्राकृतिक दर्शन यानी नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर बने। वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। उस समय भारतीयों के लिए ऐसे उच्च पद प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। उन्होंने समाज में शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार होता है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा तथा सामाजिक सुधारों का भी समर्थन किया। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी केवल एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वे महिलाओं के शिक्षा, सामाजिक समानता तथा आधुनिक विचारों के समर्थक थे। उन्होंने पारसी समाज के सुधार के लिए भी अनेक प्रयास किए। उनका विश्वास था कि समाज की उन्नति के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सामाजिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीयों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। वे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में शामिल थे। दोस्तों, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को 3 बार सुशोभित किया। सन 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, सन 1893 में लाहौर अधिवेशन और सन 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। दोस्तों, सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पहली बार स्वराज को भारतीयों का लक्ष्य घोषित किया। यह विचार आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख आधार बना।

दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में उनका चयन था। सन 1892 में वे हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए और ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। संसद में उन्होंने भारतीय जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की और भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। उनके प्रयासों से भारतीयों की समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को विशेष रूप से उनके ड्रेन थ्योरी के लिए जाना जाता है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन भारत की संपत्ति का लगातार इंग्लैंड में स्थानांतरण कर रहा है। इस प्रक्रिया को उन्होंने धन निष्कासन कहा। उनके अनुसार भारत की गरीबी का मुख्य कारण

यह था कि भारत में उत्पन्न होने वाली संपत्ति का बड़ा भाग ब्रिटेन भेज दिया जाता था। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान भारत से किया जाता था, व्यापारिक लाभ ब्रिटेन भेजे जाते थे, प्रशासनिक खर्चों का भार भारतीयों पर डाला जाता था और भारतीय संसाधनों का शोषण किया जा रहा था। उनकी इस आर्थिक व्याख्या ने भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत आधार प्रदान किया। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण का विस्तृत विश्लेषण किया। यह पुस्तक भारतीय राष्ट्रवाद और आर्थिक चिंतन की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इस पुस्तक ने विश्व का ध्यान भारत की वास्तविक आर्थिक स्थिति की ओर आकर्षित किया और ब्रिटिश शासन की नीतियों की कमियों को उजागर किया। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक नींव रखी। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्र चेतना जागृत की और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। उनके विचारों से अनेक महान नेताओं को प्रेरणा मिली, जिनमें महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बाल गंगाधर तिलक प्रमुख हैं। महात्मा गांधी ने भी दादा भाई नौरोजी को अपना मार्गदर्शक माना था। उनके राष्ट्रवादी विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, ईमानदार और प्रेरणादायक था। वे सत्य, न्याय और मानवता में विश्वास रखते थे। उनका जीवन त्याग, सेवा और राष्ट्रभक्ति का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने सदैव शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वे मानते थे कि दृढ़ संकल्प, शिक्षा और संगठन के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी का निधन 30 जून सन 1917 को हुआ। यद्यपि वे स्वतंत्र भारत को नहीं देख सके, परंतु उनके विचारों और संघर्षों ने भारत की स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया। उनका योगदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक ऐसे महान नेता थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया और ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण को दुनिया के सामने उजागर किया। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ, महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। भारत के वृद्ध पितामह के रूप में उनका योगदान भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनका जीवन हमें राष्ट्र प्रेम, ईमानदारी, परिश्रम तथा समाज सेवा की प्रेरणा देता है। दोस्तों, प्रत्येक भारतीय के लिए दादा भाई नौरोजी का जीवन एक आदर्श है और आने वाली पीढ़ियां सदैव उनके योगदान को याद रखेंगी।

तो दोस्तों, आज के इस देश की शान कार्यक्रम में हमने बात की द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के बारे में, और इसी के साथ आज का युवावाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नंदिनी को इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए आराम फिल्म का एक गीत, मनमोहन कृष्णा और साथियों की आवाज़ों में।

सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को फिल्म आँख का तारा में। सी अर्जुन का संगीत है, प्रदीप की रचना है।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आखिरी मुजरा इस फिल्म में सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार एक गीत, जिसे लिखा है राही मासूम रजा ने, इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में कल सवेरे 7:30 पर वन महोत्सव 2026 हरित भविष्य की ओर विषय पर सहायक वन संरक्षक मुनिदीपा चौधरी से की गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
1: पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आप सुनते हैं अधर्म फिल्म का एक गीत। समीर के बोल हैं, तर्ज बनाई है आनंद मिलिंद ने।

आन बान। इस फिल्म में सुनिए मोहम्मद रफी का गाया गीत। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सोनू निगम का गाया एक गीत, आजा मेरी जान फिल्म में। गीतकार हैं माया गोविंद, अमर उत्पल ने धुन बनाई है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपालक अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के 7 पदों को प्रतिनियुक्ति ISTC के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन लेवल 11 ग्रुप ए राजपत्रित गैर मंत्रालय नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई एक शर्त को पूरी करनी होगी। मूल विभाग कैडर में समान पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी या पे मैट्रिक्स के लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक के लेवल 7 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की पार्ट ए पार्ट बी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट पिछले 5 वर्षों की APR प्रतियां भी लगानी होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन उप सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 139 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप संवेद स्वर में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे। गौरव गान आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

श्रोताओं, अभी आप संवेद स्वर में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे। गौरव गान आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे

0: में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृहमंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्डधारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और

0: देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात,

0: प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमरीका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रूपये से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said, the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added, the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit.

0: 만탄.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: श्रोताओं, कल सांख्यिकी दिवस के मौके पर सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कई खास रिपोर्टें जारी की और इन रिपोर्टों में भारत की जो सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की रफ्तार है, इसके बारे में हमें एक तस्वीर जानने को मिली। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने का एक लक्ष्य रखा है और भारत इस दिशा में कैसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो संकेतक हैं उनमें भारत कैसे अच्छी प्रगति दिखा रहा है। तो आज हम मंत्रालय की जो ये रिपोर्टें जारी हुई हैं उनका एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे मेहमान आज हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: तो सिंह साहब, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, इन तीन मुद्दों पर हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने इन रिपोर्टों में फोकस किया है कि उसमें तेज गति से हमें प्रगति देखने को मिली है। शुरुआत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हैं सभी देशों के लिए और कैसे भारत इसमें आगे बढ़ रहा है।
3: देखिए, संयुक्त राष्ट्र में जब 2015 में एक सतत विकास लक्ष्य तय किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2030 तक दुनिया से गरीबी समाप्त करी जाएगी, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी और सभी के लिए समृद्ध एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें भारत ने बड़ी पहल की और इसे 2026 तक में ही उसने एक तैयार किया खाका और 277 मानकों पर आधारित 17 SDG जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार किया और इसमें जो बनाया गया वो सबसे पहला है गरीबी समाप्त करना, यानी सभी तरह की गरीबी को हर जगह से उन्मूलन इसका किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत मेहनत से पूरे देश में इसको लागू किया है। और इसका मतलब यह है कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, सभी आयु वर्ग लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा समानताएं किसी भी तरह की किसी को नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बेसिक सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, यानी कोई भी व्यक्ति बाहर खुले में शौच करने के लिए बाध्य न हो उसकी ये सुविधा मिलनी चाहिए, यानी बेसिक चीजें होनी चाहिए। उसके बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए, हर गरीब आदमी को जितनी भी उसकी जरूरतें होती हैं बेसिक, सबसे पहला उद्देश्य था भारत सरकार का कि उनको कैसे हम दिया जाए। दूसरा था कि उनको स्वास्थ्य कैसे उनका सही किया जाए, सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण उनका निश्चित करना इसका उद्देश्य था। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन सबको प्राइमरी मिल रही थी लेकिन प्राइमरी एजुकेशन से कैसे आगे बढ़ा जाए, ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे स्कूल जाएं तो वो फिर आगे की शिक्षा ले सकें। सबसे बड़ी जरूरत थी इस देश में लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी। जैसे इस रिपोर्ट में भी आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को कहा जाता था कि कुशल महिला मजदूर हमारे देश में कम उपलब्ध होती हैं वनस्पति पुरुषों के, लेकिन इस रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के जो स्किलफुलनेस है वो बढ़ी है, यानी उनकी निपुणता, प्रवीणता, काम करने की दक्षता में सुधार हुआ है। और यह एक बड़ा संकेत है इस देश के लिए कि जिस वर्ग को हम हाशिए पर रखकर चलते थे महिलाओं को, उस वर्ग की भागीदारी इस देश के विकास में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा स्वच्छता, क्लीनलीनेस, जिसके लिए प्रधानमंत्री जब से सत्ता में आए हैं 2014 से, जब से इन्होंने

0: प्रधानमंत्री पद संभाला है, तब से इस देश में स्वच्छता का एक कल्चर डेवलप हुआ है जो लोगों को यह बता रहा है कि स्वच्छता से क्या क्या मिल सकता है, और हमें लगता है कि यह हर व्यक्ति तक पहुंचाने में यह सरकार सफल रही है।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में इन पैमानों को रखा जाता है, और इसमें आंकड़ा भी सामने आया है जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि जो सोशल प्रोटेक्शन है यानी सामाजिक सुरक्षा का दायरा है वो 2016 में करीब 22% आबादी तक थी, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं इन रिपोर्टों में उनके मुताबिक ये कवरेज 65% से भी ज्यादा आबादी तक पहुंचा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे ये संभव हुआ है और इसको कैसे मापा जाता है।
0: सतत विकास लक्ष्य का जो हमारे 17 तय किए गए हैं ये 100% कवरेज होनी चाहिए, हर व्यक्ति को ये सुविधा मिलनी चाहिए, खास तौर से जिन्हें जरूरत है। और ये 22% से अगर 65% हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जिन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक से नहीं मिलती थी, जिन एक सीमित दायरे में ही स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त सरकारी सबको मिला करती थी, जिनका दायरा बढ़ा है। जैसे आयुष्मान को अगर हम ले लें, आयुष्मान की सुविधा जो भी उसके योग्य होगा, दक्ष होगा, उसके लिए होगा, वो सबको उपलब्ध होने लगी है। इसका सीधा सा मतलब है कि सबके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, सबके बच्चे को प्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक की सुविधा देने की सरकार कोशिश कर रही है कि हर तरह की सुविधाएं उन्हें मिले। इस देश में IIM, IITs और इस तरह के विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को इसमें कैसे समाहित किया जाएगा, सरकार ने इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई है, IIM की संख्या बढ़ी है, IIT की संख्या बढ़ी है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेजों में सीट्स की संख्या बढ़ी है। तो इससे क्या है कि ये दायरा बढ़ने का मूल वजह यह है। दूसरा है कि खाद्यान्न की सुविधा, आप सोचिए इस देश में 2/3 आबादी को यानी करीब करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज सरकार की ओर से मिलता है। इसका यह मतलब है कि जिन्हें जरूरत होगी मुफ्त अनाज की उन्हें मुफ्त भी दिया जा रहा है, यानी सरकार किसी को भी भुखमरी का शिकार नहीं होने देगी। एक हमारे 17 जो गोल्स हैं इसमें एक गोल भुखमरी का भी है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा इस देश में। जो हंगर इंडेक्स में हम कभी बहुत पीछे हुआ करते थे उसी को देखते हुआ ये बात लाई गई कि भला हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है, खाद्यान्न सुरक्षा हमारी इतनी मजबूत है, सब कुछ सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति को उपलब्ध है, तो इससे क्या हुआ कि दायरा बढ़ गया।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि विस्तार से बताया कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की स्थिति में और मूलभूत सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई है उससे निश्चित तौर पर जो विकास के मानक है या संकेतक है वो ऊपर आए हैं। इसी तरह से आपने लैंगिक समानता की बात की तो अपने श्रोताओं के साथ मैं ये आंकड़ा जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि 2015 से 17 के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 896 थी, जिसे हम सेक्स रेशियो एट बर्थ कहते हैं, यानी जन्म के वक्त लैंगिक जो अनुपात होता है। जन्म के वक्त लैंगिक अनुपात बढ़कर 2022 से 24 में ये हो गया 918 और आगे आने वाले समय में इसके और तेज गति से बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से जो तकनीकी क्षेत्र में कौशल की हमने चर्चा की उसमें महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में जो 48% थी वो 2025 में बढ़कर 51% हुई। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ रोजगार पर। हमने इन रिपोर्ट्स में ये देखा कि जो पहले बेरोजगारी दर 6% थी वो घटकर अब 3.1% के आसपास आ गई है, तो बेरोजगारी दर के घटने के किन कारणों को आप देखते हैं और कैसे ये संभव हो रहा है?
0: देखिए, बेरोजगारी का घटना इस देश में सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंच रही है, सरकार जो सोच रही है वो लोगों तक पहुंचाने में सफल है। सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि लोगों को कैसे रोजी और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। रोजगार के मायने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, पहले तो इस धारणा से बाहर आना होगा लोगों को, और इस देश में सरकारी और गैर सरकारी के अलावा रोजी रोजगार छोटे उद्यमों को भी सरकार ने इस श्रेणी में रखा। छोटे मोटे रोजगार करने वाले, मान लीजिए किसी के यहाँ 5, 7, 6, 5 मतलब 10 से ज्यादा नहीं, इससे भी कम लोग काम करने वाले थे, तो पहले इनका नाम दर्ज नहीं होता था EPF में। सरकार ने कहा कि आखिर कैसे इसको आंकड़ा कैसे जुटाया जाए, किस मानक पर माना जाए कि ये लोग नौकरी इनको मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। एम्प्लॉयमेंट मिलने का जो मानक माना गया कि जिनका PF कटता होगा यानी प्रोविडेंट फंड कटता होगा, भविष्य निधि में जिनकी कटौती होती होगी उन्हें मान लिया जाएगा कि उन्हें नौकरी दे दी गई। अब होता यह था कि सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी देने में प्रॉब्लम एक आती थी, PF कटवाने के चक्कर में वो उद्यमी डरता था कि किसी नए आदमी को नौकरी दे दें हम और उसका PF कटने लगेगा तो सरकारी ढेर सारे हमारे पर नियम कानून लाद दिए जाएंगे और वो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, प्लस जितना PF कटता है उतना और हमें तनख्वाह वेतन देना पड़ेगा। सरकार ने एक नई योजना लागू की कि नहीं, जो भी आपके पास जितने दिन भी और जितने लोग भी काम करते हैं, कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, तनख्वाह कितनी देते हैं या आप तय करें।

0: न्यूनतम तनख्वाह से ज्यादा होनी चाहिए या न्यूनतम तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए। उसमें से जितनी आप पीएफ कटेगा उतना सरकार आपको एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में, यानी उस उद्यमी के, यानी ताकि आपको अतिरिक्त बोझ न पड़े। इससे क्या हुआ कि हर उद्यमी इस बात के लिए खुश हो गया और अपने यहाँ जो भी लोगों को नौकरी पे रखता उनका पीएफ कटने लगा। तो ऐसे में संख्या रोजगार की बढ़ी और वो जो डेटा दिख रहा है वो क्लियर कट बता रहा है कि रोजगार बढ़ा है।
1: बिल्कुल,
0: रोजगार बढ़ने की वजह और भी है कि आप देखें कि भाई पीएफ तो नहीं कटता। आप एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ जो ब्लू इकोनॉमी है, इस गोल में एक चीज दिया गया है ब्लू इकोनॉमी को लेके कि जल के नीचे की कैसे संरक्षित किया जाएगा। उसमें इन लोगों ने क्या किया कि भाई ब्लू इकोनॉमी हमारे देश में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमें उसमें रोजी रोजगार इस गति से बढ़ा है कि मछुआरों की जिंदगी में सुधार आया है, लोगों के जेब में पैसे जाने लगे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और खेतिहर लोगों के खासों से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है।
1: बिल्कुल, आपने विस्तार से बताया। और एक और बड़ा रोचक तथ्य यहाँ आपके सामने मैं रखना चाहूंगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2014-15 में प्रति व्यक्ति जो नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आदि ऊर्जाओं को शामिल करते हैं, उसमें खपत जो थी वो 64 वाट थी प्रति व्यक्ति, वो बढ़कर अब 193 वाट पहुंच गई है। यानी अब नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हर व्यक्ति जो 2014-15 में जिस गति से करता था उसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। आप कैसे देखते हैं कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम रुख कर रहे हैं जो कि पर्यावरण के लिए और विकास के लिए बहुत अहम है?
0: देखिए, भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है ना नवीकरणीय ऊर्जा, यानी जो वो ऊर्जा जो तेल यानी पेट्रोलियम, कोयला या ताप विद्युत गृह से नहीं आती थी, वो इन्होंने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या हाइडल यानी पानी से, जिनमें इस तरह की ऊर्जा की खपत तेजी से इसलिए बढ़ी है कि अब उसकी बड़ी वजह है क्योंकि इसका जनरेशन शुरू हुआ पहले। भाई पहले ऊर्जा होगी तो खपत होगी ना। हमारे यहाँ सप्लाई पहले बढ़ाई गई। सप्लाई बढ़ाने का मतलब कि सरकार की योजना यह है कि हर घर की छत पर बिजली पैदा होनी चाहिए, हर किसान के खेत में बिजली पैदा होनी चाहिए, यानी सौर ऊर्जा पैदा होनी चाहिए, ऊर्जा पैदा होनी चाहिए। जितने भी पंपिंग सेट लगेंगे, जितने भी ट्यूबवेल लगेंगे किसानों के खेतों में, हर ट्यूबवेल के ऊपर वो योजना है कुसुम योजना। कुसुम योजना के तहत यह है कि किसान के खेत में जो उसका पंप चलेगा वो सौर ऊर्जा से चलेगा या पवन चक्की से चलेगा। तो इसका मतलब है कि देश में लाखों की संख्या में कुसुम योजना के तहत, प्रोजेक्ट के तहत किसानों के खेत में अपने ही खेत से पैदा हुई ऊर्जा, यानी जो ऊपर की धूप है, धूप से पैदा हुई ऊर्जा से खेत की सिंचाई हो रही है, ट्यूबवेल चल रहा है, बाकी उसके काम हो रहे हैं। इसी तरह से हर घर में जो खपत होती है ऊर्जा की, अपनी छत पर आदमी लगा लेता है पैनल, सौर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल, और सोलर पैनल से बिजली आ रही है। बिजली से अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी बिजली खर्चा होती है उसके अलावा जो फालतू यानी सरप्लस जो बिजली पैदा होती है वो चली जाती है सरकार के नेटवर्क में, यानी बिजली कंपनी की ओर चली जाती है, यानी वो क्रेडिट हो जाती है उसके अकाउंट में। जब उसकी जरूरत होती है तब उसका वो खर्च कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: यानी बिजली की खपत भी करता है और उस बिजली को लोगों को बेचता भी है। ऐसे में खपत बढ़ती आज स्थिति यह हो जाएगी एक दिन आने वाले दिनों में, जिस तरह से हमारे हर छत पर ऊर्जा पैदा हो रही है, सौर ऊर्जा पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में हमें लगता है कि हमारे पास सौर ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी दैन की जो हमारे अभी ताप विद्युत गृह और हाइडल से पैदा।
1: बिल्कुल, तो कई और संकेतक हैं, जैसे पर्यावरण के मामले में भी कई सकारात्मक नतीजे आए हैं। और एक खास विषय जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी किस तेजी से बढ़ी है, इसका उदाहरण हमें इससे मिलता है कि करीब 32 करोड़ लोगों के पास 2015 में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन था जो बढ़कर अब पहुंच चुका है 98 करोड़।
0: इसके सीधा सीधा मतलब है, आप समझिए, पूरे दुनिया में जिस गति से डिजिटल ताकत बढ़ी है, लोगों में ताकत आई है, इस देश की सबसे बड़ी अगर मैं कहूं आधारभूत अगर मजबूती आई है तो वो आई है डिजिटल क्रांति से। इस देश में प्रधानमंत्री की ये योजना जो डिजिटल क्रांति आई है, चाहे वो जीवन के किसी भी हिस्से में आप देख लें, भाई आप डीबीटी कैसे होता है, डीबीटी बिना फोन के तो हो नहीं सकता, फोन में तब होगा जब इंटरनेट कनेक्शन होगा, इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। सरकार ने इतना सस्ता, दुनिया में इतना सस्ती डिजिटल सुविधा और कहीं नहीं है,
1: और पूरा इकोसिस्टम बना है,
0: पूरा इकोसिस्टम बन गया, हमारे जीवन का हर हिस्सा इसी से प्रभावित हो रहा है। हम बैंक का संचालन यहीं से कर रहे हैं, हम अपने घर के बैठे हुए यहीं पर सब कुछ देख रहे हैं। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज होती है इस देश में। आप समझिए, हमारे एक जमाना था रूरल इंडिया, सबसे गरीबी का मानक क्या था मालूम है? कनेक्टिविटी का अभाव आदमी को गरीब बना देता था। कनेक्टिविटी के चलते आज छोटा सा छोटा उद्यम करने वाला व्यक्ति भी ज्यादा कमा रहा है। सिर्फ कनेक्टिविटी अगर उसकी आज कट कर दी जाए तो हमें लगता है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कट जाएगा। सरकार ने यह इतनी बड़ी ताकत लोगों

0: हाथ में पहुंचा दी है। डिजिटल ताकत से हमारे देश के गरीबों का सबसे बड़ा उद्धार हुआ है।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सिंह साहब, कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से आपने इन पूरी रिपोर्टों पर अपना विश्लेषण रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: मंथन।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेश से आते हैं।

श्रोताओं, आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर, ताकि आप अपने पसंद के गाने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन पाए। तो जल्दी से नोट कीजिए हमारा नंबर। हमारा नंबर है 9474234000, और लिख भेजिए कार्यक्रम का नाम, संदेश से आते हैं फिल्म का नाम, गीत के बोल, अपना नाम व पता जरूर लिखें। और लेते हैं कार्यक्रम का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे हमें भेजा है गोलाघाट असम से रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लकी जी ने। ये सुनना चाहते हैं जीवन मृत्यु फिल्म का गाना। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म पतंगा से, और इस गीत को पसंद किया है सदर बाजार मारवाड़ बिल्लाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक जी ने।
1: हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन बाबू अहद, मिफ्रा बेबी चाहत और सादिया, इन्होंने पसंद किया है फिल्म अंदाज के इस गाने के लिए।

नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाहंकर निर्मला विशाल। मलकापुर से नारायण इंगले सोपान आशीष मुरहेरकर। इन्होंने पसंद किया है हमराज फिल्म का गाना, तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

आया सावन झूम के। इस फिल्म का गाने के लिए हमें फरमाइश की है लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश प्रतीक्षा, स्वप्निल रक्षिता और पूरा लोखंडे परिवार ने। तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, चलते चलते अब हम आपको बता दें मौसम का हाल। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खराब मौसम के कारण वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे आज से 2 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा यहीं पर संपन्न होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 10वीं तिथि तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:28 और 40 सेकंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: श्रोताओं, आज पहली जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, लोगों को वनों के महत्व से परिचित कराना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। वन हमारे जीवन का आधार है। वे हमें शुद्ध वायु, फल, औषधियां, लकड़ी और अनेक प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं। साथ ही वे वर्षा लाने, जलवायु को संतुलित रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जैव विविधता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुर्भाग्यवश बढ़ती जनसंख्या और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण वन निरंतर कम होते जा रहे हैं। यदि समय रहते हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आइए वन महोत्सव के इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। यही प्रकृति के प्रति हमारा सच्चा सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे सुंदर उपहार होगा।
0: ये था अनमोल विचार। अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।